जो बन सच्यो शैली उन्दी जो बन खर्च छन्दी जो बन सच्यो शैली उन्दी जो बन खर्च मौकाई हो जसो परे पर्छ तरकारीलाई लौकाल्यो अचार के बनाइसे तरकारी

स्नो फिल्म प्राली सगौरा प्रस्तुत गर्दछ मनोज सिंह धामी को उत्कृष्ट लय तथा शब्द सृजना में मनोज सिंह धामी र देवी घाटी को सुमधुर आवाज मनोज सिंह धामी को लोक दोहोरी गीत यति धेरै माया लाग्छ किन पीआरबीटी 013-00-45741 र पीआरबीटी 6045-1903 सर्वत्र बजार में उपलब्ध छ।

सारै हाम्रो सुदूरपश्चिम, हाम्रो सुदूरपश्चिम सारै हाम्रो सुदूरपश्चिम। पपी साइपल झलल सेती काली झलल, पपी साइपल झलल